तेरा था भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम, मालक दा दर सोना है। एक गल दा ख्याल रखना, मालक दा दर केड़ा है। सो दर केहा, सो घर केहा, जित दर वसे कवन दर कही है। दरा भीतर दर कवन लहे।

उतना बारंबार जो बंसल पके पोंगरे बोरना लगेगा, जो बंसल पके पोंगरे बोरना लगेगा। गुरु सेवा पे पद कमाई तब ए मानस दे ही पाई, मानस जन्म अमूल पायो वृथा काहे गवाओ। गुरु सेवा ते भगत कमाई तब ए मानस दे ही पाई, इस दे को सिवरे देव सदे पज हर किसे पजो गोविंद पूर्णत जाओ, पजो गोविंद पूर्ण मत जाओ, मन सिम का लाओ

जब लग बिकल पाई नहीं बाणी पज लहरे मन सार पानी अब ना पजस पजस कब पाई आवे अंत ना पजिया जाए ए तेरे अवसर ए तेरी बार ए तेरे अवसर ए तेरी बार काट पीतर।

गोविंद भजन बिंद्र थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। गोविंद भजन बिंद्र थे सब काम जो किरपन के नरार्थ दाम। फिरत बहुते जुगहारे हो फिरत बहुते।

कई जन पैकेट पतंगा, कई जनम गाजर मीन कुरंगा, कई जनम पंखे सर्प होयो, कई जनम पंखे सर्प होयो।

0: पहले ही देख तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगे?
0: खुंडकारा लकड़ी दे उस टुकड़े नु कहंदे ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जांदा।
1: पटरा क्यों लगे?

मन विच वस जावे बड़िया बरकतां। वाहिगुरु दा नाम प्रभु दा नाम हिरदे च वस जावे बड़िया वडियाई है, बड़ा आनंद है। ये रोने झोरे केवल उन्हां लोकां वास्ते ने जिन्हां दे हिरदे च नाम नहीं, जिन्हां दे हिरदे विच नाम है पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद है। जपदे हां, जपन दे जतना विच हां, हिरदे च वसाउण दे जतना विच हां। साडी लोड़ भी है, साडा जतन भी है। लोड़ भी साडी है कि सानू सुख मिले, ते सुख क्योंकि होर कितने नहीं मिलदा। साडे सारियां दा प्रयोजन है कि नाम वस जावे हिरदे च, जीवन च नाम आ जावे ताकि सुख आ जावे। जदों कदे ऐसा महसूस होवे ना कि मन अजे सुखी नहीं, मन अजे शांत नहीं, जदों कदे ऐसा प्रतीत होवे मन विचों क्रोध अजे नहीं गया, मन अजे लोभ करता है, मन च वासनावां कायम ने, मन विच ईरखा बदस्तूर मौजूद है, जिन्ना चिर महसूस होवे समझ लेना नाम अजे जपण दे आर विच आ हिरदे च नहीं वसिया। जदों हिरदे च वस जांदा है मनुख बड़ा होर तरह का हो जाता, उदो रोमा विचो अमृत चढ़दा है, स्वाद आउंदा है। उस वेले खून दे कतरियां दे विचों भी कली कली नस विचो, पूरे शरीर विचो, स्वासा विचो नाम उचरिया भी जांदा है ते नाम सुनदा भी है, अपने आप नूं अपने आपे विचो ते अपने आले दुआले विचो नाम दीआं धुनां प्रतीत हुंदीआं ने। इस शब्द आपां पढ़ रहे हैं ना, साहिबंत कहिंदे ने नाम

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: सब मिलके करो कीर्तन।

मैं जटा मूंड तारों, मैं जंगल च नहीं जाना रहांगा इस देश विच। मैं जटा मूंड तारों, मैं मंदिर का सवार हूं। देश की रक्षा ना जटा वाले कर सकते ना मुंद्रा पाउन वाले कर सकते ने। हूं देश की रक्षा करनी पवेगी और मुकाबला करना पड़ेगा। ना जटा मूंड तारों, ना मुंद्र का सवारों, जपो तास नामं सरे सर्व कामं। मैं उदा नाम जपांगा मेरे सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। जपो तास नामं सरे सर्व कामं, ना नहीं मिल मचाऊं। मैं अखां मिट के समाधि ला के लोगों नूं लुटना नहीं। ना नहीं नंग मचाऊं, ना डुबं दिखाऊं, ना तो परमंग कमाऊं, ना पेठी कहाऊं। ना जटा मूंड तारों, ना मुंद्र का सवारों, जपों तास नामं सरे सर्व कामं।

जे जे देख सतन ने तारे जेड़े अपने तन लोगां नूं पसाण वाल के अपना तन भेखी बनाउणगे जे जे देख सतन ने तारे ते प्रभ जन किछ कह ना बिचारे समझ लियो सब जन मन माही किछ फिर सब अखर आ गया समझ लियो सब जन मन माही दिमन में परमेश्वर नाई जे जे कर्म कर डिम दिखाई तिन पर लोगन मो गत नाही परलोक च उन्हां नूं गति बिल्कुल नहीं मिली जीवित चलत जींदिया होया वो बड़े सुखी रहेंगे क्यों के अमीर अपनी माया देके उन्हां नूं सुख देंगे जीवित चलत जगत के काजा स्वांग देख कर पूजत राजा स्वांगन में परमेश्वर नाही स्वांगन में परमेश्वर नाही होर करे सब ही को काही किथे जी परमेश्वर अपना मन पर मुझे आना जिन्हें अपना मन अपने हाथ च पकड़ लिया पार ब्रह्म को तिने पछाना महाराज भेखी ने उन्हां दा की हाल होएगा तो उन्हां चेलियां दा की हाल होएगा लो फिर हुण सारे पढ़ियो

जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। लोग कैंची ना मुंडे है, ये धर्म की कैंची ना मुनी जांदा लोगन लुटी जांदा। जे जे जाको डिंब दिखावे लोगन मूंड अधिक सुख पावे। नासा मूंद करे प्रणाम, नासा मूंद के नमस्कार करन दिया। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। ये कुछ हिस्सा राधा स्वामी च है कि इंद्रियां बंद करके ते अंदर कू कू सुननी। नासा मूंद करे प्रणाम, फोकट धर्म ना कौडी काम। फोकट धर्म जिते जग करी, नरक कुंड पीतर ते परी। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, एक्टिंग करनी अनेक प्रकार की। हाथ लाए सुर्ग न जाऊ, जो मन जीत सका।

जे जे बाद करत अहंकार, जे जे बाद बाद झगड़ा हंकार वाला झगड़ा जिसे होमे बदे। कई बार परमार्थ की विचार करद हो होमे बद जाती, वेख्या ना मैं जित लिया, मेरे सामने कू नहीं सकिया, बोल नहीं सकिया, मेरे सामने ताकत नहीं पई कि दूजी गल कर सके, वेख्या जितिया। कहिंदे उथों रब उथों चला गया, जिसने आ चीज आखी ओहदे कोल रब चला गया। जे जे बाद करत हंकार तिन ते भिन्न रहत करतारा, जानिया हर जन मन माई वेद कितेव दिखे हर माई। ए झगड़ा मत करो, इत्थे ते रब है ही नहीं। वेद कितेव दिखे हर माई, जान लो हर जन मन माही। आंख मूंद को डिंब दिखावे, अंदर की पदवी कह पावे। आंख मीत मग सूझ न जाई, ऐस दुनिया का रास्ता नहीं दिसता, अगला कौन वेखेगा। आंख मीत मग सूझ न जाई, ताहे अनंत

जन्म था, अब है और आगे हुए है। पूछा मारा तुहाडा गुरु कौन है, गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने पूछा गया तुहाडा गुरु कौन है, कहंदे आओ मैं तुहानू अपना गुरु दसा। कोट किंद्र करे जे के, जिन्हें करोड़ा इंद्र बनाए ने, कोट के इंद्र करे जे के, कई कोट उपिंद्र बनाए खपायो, दानव देव फनिंद तरा तर, भूत भविख उपाय मटायो, आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो। आज तक शिव जी ते ब्रह्मा जिन्हों का तप करते ने ते उन्हों का अंत का पता नहीं लगा। आज लगे तपसा दिता है शिव ऊ ब्रह्मा किछ पार न पायो, वेदक देव वेदक देव ना भेद लख्यो जे

चांदने बहन ठगे सब लोगन शीश जटा नख हाथ बढ़ाए जटा बना लिया ते हथां दे नौ बदा ले ते ध्यान ला के बैठ गए लोगों नूं ठगण वास्ते ध्यान लगे ठगे सब लोगों शीश जटा नख हाथ बढ़ाए लाए विभूत फिरियो मुखी उपर सवा मन लई लाए विभूत फिरियो मुखी उपर देव अदेव सबे डहकाए चंगे माड़े सारे लुट ले मूर्ख ते सियाने सारे लुट ले इन्हें किसी ने छड्डिया ही नहीं तू क्यों धोखा खा गया कहिंदा चंगा भला मैं सियाना सा मेरी माती मारी गई ऐसे चलाक लोग सन लाए विभूत फिरियो मुखी उपर देव अदेव सबे डहकाए लभ के लगे फिरियो कर ही कर जोग के नास सबे बिसराए आखो प्यारियो श्रीवा सारिया ने आख्या सारे गज के आखो श्रीवा एक बार आख्या ते हजारां दा फल मिल गया इसलिए इस सस्ता शब्द फिर कर लो सारे गज के आखो लोग दा मारिया होया घर घर भी चला गया कि मेरा सत्कार कर मैंने लोग नमस्कार कर पर जोगी नू अपने नियम भुल गए इनू ए नहीं पता कि जोगी बनी किवें दा किवें बनी दा जिवें सिख नू नहीं पता कि सिख किनू कहिंदे ते पढ़ लेना असा राज करेगा खालसा आ की रहे ने कोई बिल्कुल गलत चीज ए मलम्मा नहीं चल सकेगा ए गलत है साडा योग के न्यास सबे बिसराए जिहड़े योग दे नियम सन योग दे जिहड़े नियम सन ओ इहनू भुल गए इहनू पता नहीं कि जोगी कहिंदे किहनू नहीं पर इह मूंह ते सवा ला के जोगी बन के पिया फिरदा जरूर जिवें इहनू नहीं पता कि सिख किहनू कहिंदे ने ते कहिंदा जरूर मैं अपने आप नूं सिख ते बड़े मान च पढ़दा राज करेगा खालसा ज्यों ज्यों पढ़ी जांदा त्यों त्यों खुशी जांदा नुकसान हुंदा जांदा ये क्यों नुकसान हुंदा है ये पढ़न वाल पै गया ते प्रैक्टिकल किसी अंदर चीज ना जीवन लिया गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ना समझिया सिर पढ़ छड्डिया और पढ़िया भी कवेले कवेले पढ़िया अज पता ही नहीं किसनू कि राज करेगा खालसा पढ़िया किस वेले जाना है जे 11 बजे भोग पै गया तां भी पढ़िया गया 2 बजे भी पढ़िया गया 4 बजे भी पढ़िया गया मृतक ते भी पढ़िया गया सारे पासे पढ़िया गया ये खास नियम हन ये तख्तां नूं जाके पुछो कि राज करेगा खालसा नियम की और फिर अगो खालसे दे अर्थ करे कौन जिहड़ा डंडे खावे वह अर्थ करे क्योंकि तुसा अर्थ मन्ने नहीं पर आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने पर अज नहीं मैं कहना भाई कभी फिर आवांगे फिर वेखी जाए आखे ने गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने हजूर कहिंदे जोग के न्यास सबे बिसराए इहनू पता ही नहीं कि नियम की हन आ छोटा जिहा नियम गुरु रामदास सच्चे पातशाह ने लिखिया आए मेरे गुरसिख आए मेरे तू मेरे गुरु के प्यारे सारे आ गए भज के सारे ही आ गए सारे गाउन लग पे सारे सुन लग पे सतगुर ने आग्या दिती सारी आई संगत जी सारे सारे सिख हो कहिंदे महाराज सारे ही तुहाडे सिख सारे ही तुहाडे सिख कहिंदे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने चोज वरताया जे बीबी आवे ते पुछण बीबा तू किहदी सिखणी है ओ अपने पति दा नां लै दे जां इशारा कर दे मैं महाराज इहदी सिखणी सिख आया प्यारा तू किहदा सिख है उहने फिर अपने घर वल इशारा करता कि महाराज मैं इहदा सिख सारिआं नूं पुछिआ कोई एक अद्धा निकलिआ कहिण लगे सारे अपने अपने सिख ते मेरा सिख कोई भी नहीं निकलिआ

फिर करो भाई पूजा, फिर करोड़ रुपया इतने वार दिता जाए ना तो आ जरा सुख है उन्हें नहीं लभ सकता जरा तुम्हें प्राप्त हो गया। आओ पे शुक्र आके धनवाद करिए, गुण गाइए, साडा आया हुआ सफला हो जाए।

प्रभु की जरा गल सुना दे संसार के विकारा के बंधना तो जरा बचावे है कोई ऐसा सज्जन मित्र है कोई ऐसो हमरा मीत सकल समग्री जियो हियो देओ अर्पो अपनो जीत ओदे नाल पक्की सांझ पा। श्लोक वारा ते वधीक पढ़ने साहबा ने कहा जे तू

जगत गुरु बाबा तन तन साहब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबा नू हिकड़ी नाल लाउन वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ मैला पहला विच कृपा कर देने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है, पर मैं मंगा की हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी

गुरु की संगत अज दा शुभ दिन कॉन्फ्रेंस दे पहले दिन दी अरमता और बख्शिश सतगुरु जी दी इस वक्त समा जरा अमृत वेले तो लैन के आप जी नूं जरा थोड़ी जी गर्मी महसूस हो रही होवेगी। जिथे आप जी ने सतगुरु जी दे कई चमत्कार देखे हैं उथे सब तो वड्डा चमत्कार शब्द है, एदे विच कला है। वाजे पंज शब्द घर सवागे, घर सवागे शब्द वाजे कला जद गिरधारिया। उस कला नूं होर प्रगट करन वास्ते सतगुरु जी ने शब्द नूं रागां विच उचारण कीता है। मेरा दिल करदा है इस वक्त सारे दुनिया दे विद्वान और कलाकार सूझ वाले बैठे हो, गुरु दी कला देखिए राग सारंग विच और आप जी चंगी तरह समझ के इस नूं सुनोगे, आप जी दे तन मन विच ठंडक पैदा हो जाएगी और गुरु दी बख्शिश और समय दा इह निचोड़ होवेगा। शब्द सारे माई भाई बड़े प्यार नाल टिक के सुनांगे तां इहदा ज्यादा लाभ होगा।

जियो लबत है मोह मीठा माया। कंचन नारी में जियो लबत है मोह मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री। बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के हे परमात्मा असीं तेनूं भुलाया होया है।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपने चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां।

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। साधु संगत हुण ध्यान देण, हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुरु कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन,

चंगे। हम पापी तुम पाप खंडन। हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं? क्योंकि असी पाप करन वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करन वाले। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर देसा सामने वालों चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जाना। हम ऐसे तू ऐसा, आओगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथा है, बाणी बड़ी अथा है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे कते मन च वस जाए जीवन बदल जाता है, जीवन पलट जाता है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां, ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए